0: सच गया थाव सच गेदर की हुआ टे आव सच गेदर याने के तमाई अमारुम वेली
1: सलन ललन दलुव विलस नितंब न लोला नितंब न लोला नितंब न लोला
2: इंदाल में इंदाल याना तेरी नवती लो इवी ट्राई।

सिसम की शांति उदिशा में उतुम पिरित सज्जायने कुट वताले पाणतुर गंगुल सिरि परम विशुद्धारामाधिपति वैड सिट अपत्वी वताल प्रवचन कीर्ति श्री सरबन्य विशारद पूज्यपाद मिगस्वे सोमरतन स्वामीन महा